0: சூழ்நிலையில சிஐயும் நாற்பத்தி பிரசாரம் தொடர்பா குக்கு பார்த்தவர்களை பிராத்தமிக உபசாரக்கு மகத்துவம்
1: निर्वाचन अघि नै स्थानीय तहको पुनरावलोकनको तयारी अभिभावकको निगरानी र पुनः बालबालिका मध्ये बीचको जोखिम लगातार खबर र प्याटर्न भएको छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला।

तो दायित्व सहित जे समय निकाले तरुणी कुल सार्वजनिक करे 29 करोड़ अपेक्षाकृत 19 करोड़ रुपया तुटेको उल्लेख गरिएको छ। नागरिक दैनिक रासायनिक मल

0: उसने कहा साथी एफएम संसार में भी एक हाथ राजा पूर्व रेडियो राजा पूर्व एफएम 88.10 सुनने का हाथ से संध्या 4:30 बजे प्रसारण किया था। आज का अपना प्रमाण संग्रह राजा राजकीय नगरपालिका प्रारंभ चिंता रंगर धन आज हम लोग हंसते हुए कौन को कुछ जीवन छुराए के बारे में बात करते हैं राजी अश्विनी कुमार से कर रहे बातचीत लहरी स्वागत था
1: राजकीय नगर पालिका टीम राम लाल ठाकुर अब जानवर तो अब गिरता कर दिया जाए कई साल में साल से जो है तीन सौ साठ के वर्ष हुआ था अब जन्म तो ये लखनऊ
0: अपने पुरखा
1: एक
0: है
1: ये लखना पहले तो बुरवा रहा है वैसे हम देखा था कुछ नहीं रहा है हिसाब करवा दी नया और हमारे के पहले हम समझ लें कि जहाँ काम घर का हो रहा है बस काम है नहीं चलो मछली पा रहे या दिन या पौधिया में कौन सा स्वीकार खेले न स्वीकार खेले बनो मैं ये काम कर रहे आप काम धंधा रहा है नहीं रहा है खेती पाट के काम हुआ बस काम है हाँ काम नहीं है मुख से इस समय में बाजी तो करना चाहिए तमाम काम का तमाम काम का कमाई से करता है लखना का वो पहले यही चौक पर लखना चौक पर यको घर रहे मैंने पहुंचा ये सब एक घर रहे यह सब खेत खपा रहे डगर रहेगी रस्ते के कई है तो लखना चौक डगर रस्ते के चलते खाड़ी जम अब तो पक्की रोड बन गई लखनऊ को वो साइड राहत में सही गया है धान बचते थे धान बचते थे अब हमसे घंटे मिल रहा है सब चिंता बढ़ गई है बड़वा तक पहुंच गए भगड़ा तक पहुंच गए घाट मिल गए और मतलब दाड़ा पकड़ ले गए तो लखनऊ से भाड़ी हुई है तो बड़वार का हो रहा है का खाली है और यही सब कुछ नहीं है मोर जाना अरे वो शायद तो हमारे बीच में पढ़े जाए जलवा करो मैं पूरे पढ़े जाऊँ मैं तो जगह पहन ले जाऊंगे तो जगह में पहन ले पढ़े जाए अथवा पार्टी मुंबई लिखी उसे माँ के घोर घर के वहां से कठोर पार्टी में लिखा पड़े पढ़ा पाएंगे स्कूल वहां दरबार है 7 तक 8 तक के पढ़ा है उसे मास्टर हुआ है और उसे फिर उपाय एक से चौर लाने तो कहो दू से चौर लाने खरीद पाए तो सिलेट रहे तो सिलेट कोई कोई लिखा लड़का भी नहीं जो है तो मान में कठोरों पर निर्वाह कर सबको नए के अब अरे सबको जान मगर कम कम जाए सब बहुत ज्यादा तो भगवान पहले मैं तो भगवान पहले पढ़े जाऊँ सब पढ़े मैं अब शायद लगभग मैं दो क्लास तक के भगवान लगा के पढ़ लू वो सात बजते हैं सवेरे हम उठते बजते नहीं है सब हरे हरे का सब भगवान पहले हम तो जल नदी के पास कच्चे सुरमार पहनाओ जूते अस्पताल में जूते नाम के पहना देते हैं उसे नाम आता बता हमारे रूप में कुछ पकड़ ले लेना हमें कम से कम नहीं पांच बार तक के लिए भगवान पहले तो हम भेज लेता सब कह रहे कर देखो भगवान पहले खेली गम्मा ये मेरे का शायद अवस्था को देख भी कर देना अवस्था वो शायद कमजोर है कमजोर है ये बूढ़े कमजोर है कि कैसा कह रहे ये नदिया पूरे महाजन लोग आते हैं वही से पूरा मामल के गुड़वा कर जाइए तो है तो हमारे पास सब तो नहीं है धन रद्दी और फिर कहा कि अभी रह चुका है अभी बाकी रहेगा है हाँ जाने रहे हो बस सब नहीं जाने रहे तो पांच बनाएगा क्योंकि तो भूखे बनाए भूखे बनाए तो समझ लो कि बड़ा समस्या हो सकते वैसे दे रहे हो नहीं सात तक सात तक सात तक के पहले ज्यादा नहीं करते अरे वो टाइम आता काफी पाँच वगैरह खरीद खरीदे तो एक रुपया दो रुपया कलम मिला है उसे और मुझे बीटन क्लास तक तो अगर मार्टिन हो पाली मार्टिन से सिलेटर हुए पाली है तो करीब छह सात मौसम होता मैं समझ लो कि दो कक्षा से एक रुपया काफी है एक रुपया पूरे बोले तो पचास बन रहा है इसमें ज्यादा दे रहा है और वो मुझे दुई तीन क्लास तक तो बहुत सब पढ़ मटीरियल है पहाड़ा गिनती सब मटी पटी मटी कर रही जब तक छोटा बड़ा काका का लगाई जाने वो गिनती पहाड़ा मिस करके जब तेरे मस्त में पास नहीं कर
0: रहे
1: उन्हें पढ़ रहा
0: हूँ
1: परीक्षा करा है तभी तो जब तक पहाड़ा गिनती छोटा बड़ा काका काका बछड़िया जब तक के बिना हेरे नहीं दिखते तो बिना हेरे नहीं बता रहे तो पूछा नहीं सुनना पूरे तो ये तो अच्छा है फोर फोर का अच्छा चीज है वो सब अच्छा चीज ले तो तब जाके ये तलाश में बन जाता है वो टाइम और ये टाइम वहां पर लेके पढ़े लड़का जानते भी पढ़ते हैं दो क्लास तीन क्लास करा देते हैं ये सब बड़ा जब मैं करा देते तो कैसे भी पास करते हैं बड़ा करा है पहले पढ़ा तो मतलब पीटे नहीं पीटे पहले हमने जिला जाए थे तो मतलब लड़के से हुआ मार मार मार उस तब समझ के लड़का ज्यादा ध्यान था हमने सात क्लास को पढ़ लो मैंने समझ लिया कि आज कल के दस क्लास हम करेंगे दस क्लास तक काम करेंगे हमारे समुदाय में सचिव रहेंगे समुदाय में सचिव न चले मैं पिछले पचास पाँच बड़ा चले हूँ ये समुदाय का सुनता हूँ ये ज्यादा से राजनीति को लेना बस कम मजा दे रहा हूँ अभी नेता के काम राजनीति खेल जाते हमें तो राजनीति खेल रही है सोचा साथ हमने मैं तेरे को मैं कहे जानू या होते तो मतलब दोस्त लगाए जानू जब काम करता तो उसका काम करे तो मजे से ना जाने से तो उसका मजे से बैठा नहीं میں وقت کو دوست لگا کر کوئی وہ

स्कूल अंत्य में आईपुगा छो हमार संदेश सफल भाग मुख्य संदेश फिर एक पटक जेपी मल अभाव बढ़ किसान समस्या में गुलरिया नगर पालिक में 28 पारित परिवार आवास हस्तांतरण लुम्बिनी घोषणा पत्र 2083 जारी करते विशेषाधिकार समिति को प्रथम सम्मेलन संपन्न र संचार क्षेत्र सुधार में सरकार को सक्रियता 77 जिला का सदर मुकाम में एफटीएस सेवा विस्तार अस्तले बिहान 7 बजे को नेपाली भाषा को हमार संदेश यति नै बेलुका 5 बजे मौसम बुलेटिन लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी गौरीशंकर सँगै म पुष्पा।

भई शास्त्रीय खाना खाई व्यायाम शब्द करी धूमपान मदिरामा सेतु नरही तर भन नियन्त्रण करी आज निर्भय कालिक जीवन अत्रा मुसलमान रोपे माथि स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो गुरुबाबा एफएमका सहकारीमा स्वास्थ्य

तक पंचायत नारे आ रहा आप सब कुछ क्या करते हैं तो यहाँ पर जब आप उनसे आप उनसे सुनवाई की करना भी देखो चिप बात होती है

बसेपछि स्वस्थ जीवन अप्नाए निजमा रोग झट्ट बढत ढाले ढ्याबे जीवन खट्ट हुई सन्तुलित खाना खाए व्यायाम सट्ट करी धुमपान रटिनामा सेतु नरही तर भना नियन्त्रण करी आज निर्दयकालिक जीवन अन्तरा निजमा रोग बसे बाँची स्वस्थ जीवन अप्नाए।

प्रतिदिन नशा तथा निरोसर्जरी नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा चेक जाँच गरिन्छ।

جائے بابا سنجا سوا چھ بجے ہمارے سندیش میں اپنا سواگت بام کمار
सरकार खुदी किसान दुकान उपलब्ध कराए पर प्रति क्विंटल 70 रूपया का दरले अंतान रकम हालसम भुगतान निकल गति पर ज्ञात खुदी किसान आंदोलन उत्तर सरकार से घोषणा करलक अनुदान समय भरी पैल तथा जिला का किसान अनुदान सुविधा पासित व्यक्ति पर जाने किसान व्यवस्था करल गति वहां पर आंदोलन शुरू कर किसान दुकान के अनुसार सरकार खुशी का मूल्य निर्धारण प्रति प्रति क्विंटल 70 रूपया अनुदान देना प्रतिबद्धता चाहिए तर हाल समूह रकम नेपाल पांच आंदोलन कर बात मिलत मुआवजन कर कराए करवा पर ज्ञात किसान को सुविधा दीदे प्रति सरकार से अनुदान माफ कर देता मध्य उद्योग वाणिज्य संघ राजपुर का श्री कृष्ण रेग्मी कृषि मंत्रालय का सचिव को कहा उद्देश्य करते धान क्षेत्र प्रति खुशी खेती में रोक लगाईलवा कृषि किसान का दुर्ग प्रमुख जिला अधिकारी भगवान बहादुर अमर खाना ज्ञापन पत्र समेत रघुनी प्रदेश प्रभारी कार्यालय बर्दिया का इलाका प्रभारी कार्य महीना पोखर में कार्यरत प्रभारी निरीक्षक अचिल की अनु 2083 साल जेठ महीना को उत्कृष्ट प्रभारी घोषणा करना सीमा सुरक्षा अपराध नियंत्रण तथा अनुसंधान में उल्लेखनीय योगदान आधार में महिला को सम्मान प्रदान लुम्बिनी प्रदेश प्रभारी कार्यालय का प्रमुख प्रभारी नायक महानिदेशक भूपेन्द्र बहादुर खत्री श्रवस्था निर्णय अनुसार महीना उत्कृष्ट प्रभारी छनौट कर चना देवा प्रभारी स्रोत अनुसार निरीक्षक प्रत्या में शांति सुरक्षा व्यवस्थापन अपराध नियंत्रण तथा अनुसंधान में प्रभावकारी नेतृत्व प्रति उल्लेखनीय सफलता हासिल करवाट विशेष बैठक खुला सीमा क्षेत्र में अनुसार चोरी पैठारी नियंत्रण फरार प्रतिवादी टुकड़ाओ तथा अदालत का फैसला कार्यालय में वहां का भूमिका प्रशंसनीय अलग चला के बाद हुसैन खा सामुदायिक प्रभारी साझेदारी सुदृढ़ बनाए कानूनी सचेतना विद्युत निकला संचालन कई कार्यक्रम में समेत वहां का सक्रिय सहभागिता अलग प्रदेश प्रभारी कार्यालय चलाई होगा प्रभारी संगठन उत्कृष्ट कार्य करना कर्मचारीकरण प्रोत्साहन करना उद्देश्य ने प्रदान कैसीना असीम सम्मान सेवा प्रति समर्पण अभिना का संग संगठन पित्र प्रतिस्पर्धात्मक नतीजामुखी कार्य संस्कृति विकास में देवक पुग्न विश्वास कई चुका बांसवाड़ी नगर पालिका पशु सेवा शाखा उपचारात्मक सेवा संघ पशु प्रबंधनात्मक कार्यक्रम नगर पालिका उन्नमेरिक सहकारी समय में प्रबंधनात्मक कार्यक्रम अंतर्गत ई वर्ष छेरी प्रबंधनात्मक कार्यक्रम में संचालक मैदान दिलको कार्यक्रम अंतर्गत शिशिर सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था बांसवाड़ी सात देवरा कला से साझेदारी करते स्थानीय जात का क्षेत्रीय का व्यवसायिक प्रबंधन उत्पादन पेटी व स्थानीय का आर्थिक स्तर प्रश्न उद्देश्य कार्यक्रम संचालन हुई थी।

सरकारी मामला पर सभी जनमतम सभी सहयोग करेगा। सभी प्रबंधनात्मक कार्यक्रम से परिभाषा थापा खेल चाहिए अपना आर्थिक अवस्था सुधार होना।

ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विपन्न गरीब तथा पांच हजार मिलक पर्व का अवस्था सुधार मिश्र का अवस्था निकलो गांव का उद्यम शिक्षा का आवश्यकता में प्रकृति शिक्षा सामाजिक उद्योग

स्थापना पूर्वक सात जारी में कार्यक्रम संचालन लगभग बैठा पशु सेवा शाखा बांसवाड़ी में अधिकृत घनश्याम तिवारी।

masih sekali menghantar akun kapaliti artik mati kata berkena pelas kejitan sekayu sehir selalit kami cuman istan sudhama kira kuih nanti cek kejitan mengkuman sendiri dari kubah FM pasori berdia Nepal Kusmana Asyik berjaya Nepal Kusmana Nepal Kusmana Sembilan terjar dirasi sudhiba Sembhatna Nepal Kayu Senau Nepal Kusmana Hanagar Parika Kusmana Kayu Jitta Sembilan kemudhatan Nagar Pemuk Pusat Kishtra Kaldara Iwa Kone Tito Dikas Iksya Nepal Perbata Susasan Pretan Bata Kano Digital Parbiti Mapuk Muza Dengar Dikarna Udisiri Sembilan Kayu Senar Kajila Sembhatna Nepal Kusmana Sahil Amsani Sian Kater Vata Makam Sahil Bapa Sahabhagi Tamasi Istana Tahaka Yujana Prakriya Prabhat Kari Bani Dapti Dikila Udhatan Sutra Manakar Parmu Pisha Yudhapka Rashtra Nirma और प्रमुख शक्ति प्रति मामकन का क्षमता विकास में स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध लगत प्रतिबद्ध मानी बाहुकन सृजन क्षेत्री निवार सक्रिय कार्य बारा अधिकार कार्यक्रम में पार्टी का प्रमुख जिला अधिकारी टीजे तिल कुमार दमान प्रभारी प्रमुख एस पी अंगुर शिशी पारिश्वरी मंदिर का मूल महंत चंद्रनाथ योगी मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना अब्दुल जाबर अंसारी तथा नेपाल पत्रकार महासंघ पार्टी का अध्यक्ष नवीन केही शुभकामना मन्तव्य थालेका सम्मेलनमा युवाको भूमिका सशक्त बनाइनका विषयमा एकदेखि छ प्रतिशत सञ्चालन बिना आयोजन चलित सरकार संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोग गठनका लागि सिफारिस समितिका प्रक्रिया आज पहिलो चरण प्रतिनिधि सभाका आज प्रचारमा मन्त्रालयका नियोजन शीर्षक छलफलमा सहभागी नीति कानून मन्त्री कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सुविता गौतम संक्रमणकारी न्याय प्रक्रिया टुङ्ग्याए सरकार उच्च प्राथमिकताको सँग काम गरेर जानकारी दिनुभएपछि उहाँका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको बेपत्ता पारेर नयाँ छानके आयोग गठनका लागि आवश्यक सिफारिस समितिको प्रक्रिया आयोगमा परिषद चलाएका मन्त्री गौतम शान्ति सम्झौता विगत करिब 20 वर्ष अवधिमा विगत कामक एकीकृत विवरण तयार गर्न कामले मन्त्रालय आएको प्रक्रिया प्रक्रियाबाट उहाँको भूमिका आधारमा पोजिसन पेपर तयारकै बाँकी प्रक्रियाका भएका उहाँ चाहेका उहाँ सोखको राजनीतिक तलो सरकारद्वारा उपस्थित सम्भावकै संक्रमणकारी न्याय प्रक्रियामा निष्कर्षमा पुगेर सरकारको लक्ष्य र स्पष्ट गर्नबाट उसैका संक्रमणकारी न्याय सम्बन्धी आयोगको लागि कुल 21,91,70,000 रुपियाँ बजेट नियोजन कैलाकेमा चाहन्छ परिपूरण तलाक नियमावली बनाकर छोटे कोष समिति स्थापना हो सका महत्व का आयोजन राष्ट्रीय समाचार संग्रह कुमार संदेश का समय बुराई लगा था हमारा संदेश वही ना से पहला मुख्य मुख्य संदेश लिख रहा बढ़िया पाल का मुपाली का मार अंदर फोल्टी का पान तब लग पाल पाली का पुरुषों की तथा स्वस्थाय सरमा की विचार पर के बाद उस सरकार संक्रमण काली न्याय संबंधी आय पुष्पन तलाक सिफारिश समिति का प्रक्रिया आज अपराधी लक्षण के बाद अब हमार संदेश कार्विन हासार बजे नेपाली भाषा कुमार संदेश लिखाने बाटी तब समग्रा समाचार कक्ष का सकु समय प्राथमिक संग्रह कमिशन प्रसंग मोहन कुमार के विधानी रेडियो प्रभाव जय कुमार।

हो। पाँच मिनट गुड्डू जो है सिर्फ इतना खराब बाजरी बाजार किसान सब के लग गए सीधा की तरह आप सब कुछ लगे पर यहाँ पर लगे भाव में सुंदर जी के घर आते देखो

सत्य हुई सत्यले खाना खाई व्यायाम सत्य करी तुम्हें पानी बगीचा में से तो रही तला करी आज कार्य जीवन से पाती स्वस्थ जीवन अपनाई हमारे गुरुबाबा सहकारी में स्वास्थ्य कार्य विद्यार्थी गणित व्यापारी सदेश।

0: पहले आर्थिक वृद्धि रोजगारी से जनाना सुशासन आपने प्राथमिकता बनाई होने और तीसरे त्यौहार में चरितार्थ बनाकर नागरिक को मन जितने काम करना सफलता दस इसलिए जिम्मेवारी हल्का को रूप में लिए होते हैं मंत्री तथा सांसद को फजल खर्च सड़क पर पूर्ण जीवन सामान्य जनता को जस्ट होद छुटाने नागरिक को संख्या बढ़ते जान दुखद क्रा हो इसलिए पुराना तौर अवस्था में पुगिं भाला नया दल सजग होद अब खबर सुशील श्रेष्ठ
1: इस वर्ष को प्रीमौसम 45 वर्ष गति सबैभन्दा धेरै पानी पड़े जनता मौसम विज्ञान विभाग का अनुसार प्रीमौसम का अवधि में देशभर औसत 339.7 मिलीमीटर वर्षा मापन कर जो सामान्य औसत भन्दा 145.5% बढ़े हो। सामान्यतः प्रीमौसम सीजन में 226.3 मिलीमीटर वर्षा होने गए भेपनी इस वर्ष असाधारण रूप में बड़ी पानी पड़े विभाग ने जमा विभाग सन् 1981 126 वर्ष मापन केन्द्रको तथ्याङ्क आधारमा विश्लेषण गर्दै आएको छ। यसअघि सन् 19

चाहता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन विभाग

0: 40 प्रश्न कटेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौ।
1: चिसो पदार्थ, माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफुल खाऊ।
0: मद्यपान र धूमपान सेवन नगरौ।
1: स्वस्थ रहौ, सुखमय जीवन बिताऊ।